0: एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ अनुरोध भजन संगीत।
1: नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन कार्यक्रम अनुरोध भजन संगीतमा म प्रस्तोता युवेन्द्र। अबको करिब करिब एक घण्टा म यहाँसँग यहाँकै अनुरोध भजन लिएर रहनेछु। यहाँले यो कार्यक्रम अवधिभर आफूले सुन्न चाहनु भएको भजन हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4525401 मार्फत अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रम अवधिभर यहाँले सुन्न खोज्नु भएको भजन म यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। त कार्यक्रमलाई भनी अगाडि बढाउँदैछु प्रस्तुत यो भजनबाट।
2: सुदामा और कृष्ण की मित्रता के चर्चे तो सबने सुने ही हैं, लेकिन जब कृष्ण मथुरा पहुंच गए और मथुरा नरेश बन गए, सुदामा तो वहीं रह गए। वही गरीबी, वही दरिद्रता। पत्नी ने एक दिन समझाया कि जाओ, तुम्हारे बचपन का दोस्त तो अब राजा बन गया है, जाके कुछ मदद ले लो, हमारा जीवन भी अच्छा हो जाएगा। बहुत संकोच किया सुदामा ने, लेकिन पत्नी के बहुत कहने पे चल दिया मथुरा की ओर।

0: हुने महानुभावहरूले मोबाइल नम्बर 9841289820 मोबाइल नम्बर 9841289820 मा सम्पर्क।
1: श्रीमद् भगवद् गीता, गीता ज्ञान,
0: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम समर्पण। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुमधुर रसमय भजन का साथ में अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में। जीवन जीवने कला श्री श्री रविशंकर जी को एक प्रयास आर्ट अफ लिविंग को संयोजन में FM अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन श्रृंखला कार्यक्रम अमृत धारा प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 5:30 देखि 6 बजेसम्म र साँझ 8 बजेदेखि 8:30 सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योतिमा।
2: यस कार्यक्रम का प्रायोजक श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड।

0: झूले यहाँ सुंदर रुंजा एफएम अध्यात्म ज्योति ज्योति।
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

मित्रों, भगवान श्री राम जैसा कोई देव न तो दुनिया में कभी आया और ना ही आएगा। संसार का कल्याण करने वाले श्री राम की दया, कृपा और करुणा का कोई पार नहीं है। वो तो अपने भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं। भगवान श्री राम भक्तों से अथाह प्रेम के न जाने कितने कितने सच्चे प्रसंग हैं।

वनवास तो श्री राम घर से जाने लगे, सभी रघुवीर को रो रो के ये समझाने लगे, तुम्हारी कमी ना हो पाएगी कभी भी पूरी, दिल की बातें वो प्रभु राम को बताने लगे। पिता की आज्ञा को श्री राम ने बड़ा माना, लगे कहने की वचन पूरा करने है जाना। लखन और सिया संग छोड़ दिए सुख सारे, जाके पहुँचे हैं वो सभी गंगा जी के किनारे। बोले केवट से हमें गंगा पार करवा दो, अपनी इस नाव से हमें उस पार।

राम भाई लखन और पत्नी सीता मैया के साथ 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के लिए निर्जन वन में पहुंच गए और वहां पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। मगर एक दिन छल से लंकापति राक्षस राज रावण माँ सीता का अपहरण करके ले गया। राम और लक्ष्मण सीता मैया की खोज में दर दर

लगे सीता की खोज में वन वन वो भटकने लगे, कभी पेड़ों से कभी डाली फूल पत्तों से, सभी से पता प्रिय सीता जी का पूछने लगे, मगर कोई भी उनके बारे में न बता सका, जीव जंतु भी कोई दे न सके उनका पता। उधर श्री राम भक्त शबरी इंतजार में थी, राम कब आएंगे कोई तो बता दे ये जरा, भाग्य ने दिया साथ राम लखन संग आए, भाव में झूठे बेर शबरी के राम ने खाए। शबरी शबरी भी मीठे

पक्षीराज घायल जटायु ने श्री राम जी को रावण द्वारा माता सिया के अपहरण और माता को उससे छुड़ाने के लिए युद्ध और घायल होने का पूरा विवरण सुनाया। तब श्री राम ने जटायु जी को मुक्ति दी और उसके बाद हनुमान जी लंका जाकर माता की खबर लाने को तैयार हो गए। सीता मैया की खबर लाने को हनुमान चले, दुष्ट रावण को सबक सिखाने को हनुमान चले। अपनी शक्ति से सागर को उन्होंने पार किया, अशोक वाटिका पहुंचे जहां थी मात सिया। देखे श्री राम की अंगूठी उन्हें परिचय दिया, वीर हनुमत को देख खुश हुई है राम प्रिया। खाके फल भूख मिटाई और राक्षस मारे, वीर हनुमान की शक्ति से है वो सभी हारे। पकड़ा रावण ने तो जला दी उसकी लंका, लौट आए वो और मिटा दी राम की शंका। पाके पाके सीता की खबर राम जी है हर्षाए, बड़े ही भाव से महावीर को वो गले लगाए। गले लगाने के बाद श्री राम के आंखों से आंसू छलक आए और देखिए उस

निर्माण हुआ, सभी लंका पहुंचे और उसके बाद भारी युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और वो मूर्छित हो गए। राम जी अपने भाई की ऐसी स्थिति देखकर विलाप करने लगे। तब हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को लेकर आए, जिन्होंने लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए संजीवन बूटी की महत्ता बताई, जिसे लेने के लिए हनुमान जी तैयार हो गए।

उसके उपचार से ये ठीक जल्द हो जाएंगे। चले बूटी को हनुमान बिना देरी लगाए, सुबह से पहले वो संजीवनी लेकर आए। पिलाया घोल संजीवनी का चेतनाई, सबके चेहरों पर वहां थी खुशियां छाई। लखन जी ठीक हुए, राम जी हर्षाते हैं, प्यारे हनुमान को श्री राम गले से लगाते हैं। हनुमान को गले से लगाकर श्री राम जी भावुक हो गए, आंसू उनके नैनों से छलकने लगे। और तब

माता सबूरी ने मतंग मुनि के आश्रम में सालों साल प्रतीक्षा की। लोग उसे पागल तक कहने लगे, किंतु सबरी ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। मतंग मुनि ने समाधि लेने से पहले माता सबरी को बता दिया था कि प्रभु श्री राम

अपने गुरुवर के कहे अनुसार निस्दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करने लगी। रोज बागों में चुन चुन कर बेर लाती और उन्हें मीठे बेर चख चख कर इकट्ठा करने लगी कि जब श्री राम आएंगे तो ये बेर उन्हें खिलाएगी और राहों को फूलों से बिछाने लगी।

सीता माता की खोज करते करते प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों सबरी की कुटिया तक आ गए। माता सबरी को श्री राम को पहचानने में तनिक भी देर न लगी और वो श्री राम के चरणों में गिरकर रोने लगी।

माता सबरी ने प्रभु राम को आसन पर बिठाया और जो मीठे बेर उसने चख चख कर अपने प्रभु के लिए इकट्ठे करके रखे थे वो प्रभु राम को खाने के लिए देने लगी और प्रभु राम भी सबरी की भक्ति के वश में होकर बड़े प्रेम से उन जूठे बेरों को खाने लगे।

क्यों थम्मन लाया तेरा मुखड़ा प्यारा, क्या खोई है गुड़िया तेरी, क्या है किसी ने

ताला, मैं उसी में पड़ा हुआ है तेरा काबली वाला, पर कैसे टूटे ताला, दूर अंतर।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शटेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनि सूट
4: वाओ
5: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாடி
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने
2: FM AJ 104.8.

0: सुप्रपथ न्यू रोड काठमाडौँ। फोन नम्बर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

जो मेरे पल पल में शामिल है, वो कौन है जो मेरी मंजिल है, वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूँ।

0: एक्सप्रेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई देखो सदैव।
1: FM AJ 104.8 MHz।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भरि।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ यहाँलाई द आर्ट अफ लिभिङको संयोजनमा सञ्चालित यो कार्यक्रम अमृत धारामा। अब हामी द आर्ट अफ लिभिङका प्रणेता श्री श्री रवि शङ्करज्यूको प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा आजको प्रवचन सुन्नेछौँ।
1: कल्पितं रज्जु सर्पवत् दिस इज साफ दिग्गय रस्सी में। इसी तरह से चैतन्य शक्ति हमारी चेतना में, आत्मा में, ये सारा संसार दिख रहा है भाई, इतना तो जान। कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है, सब व्यक्ति के अंदर एक ही मन का प्रवाह है, अस्तित्व है। जितना हम सूक्ष्म जाते हैं उस एकता के ओर जाते हैं, उस एक तत्व के ओर जाते हैं। शरीर, स्थूल शरीर दूर दूर है, मगर सूक्ष्म ढंग से देखोगे तो जो प्राण, जो सांस इस शरीर में चल रहा है, वो सांस उसमें उसमें उसमें सभी शरीरों में चल रही है, और उससे भी, प्राण से भी सूक्ष्म है मन। इसलिए अचानक तुम्हें कभी प्रसन्नता होती है किसी व्यक्ति से मिलने से, और किसी से मिलने से अचानक दुखी हो जाते हो, होते हो कि नहीं? मन इससे सूक्ष्म है, मन का एक फील्ड है जिसको कहते हैं, मन का अपना एक विस्तार है। अपना सेवा भी करने के लिए क्यों कहते हैं, हम जुड़े हुए हैं ना दूसरे सबसे, जुड़े हुए हैं, वहां वो हो तो उसका असर तुम पर भी पड़ेगा। आनंदम परमानंदम सबोधस्वम सुखी धवा, मैं आनंद हूं परमानंद हूं, ये बोध तेरे भीतर जाकर तुम सुखी हो जाओ, मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कान ऐसी गहराई से उठे, ऐसा मुस्कान एक बार उठ जाए फिर मुरझा नहीं सकता, फिर मिटता नहीं, फिर घटता नहीं, बना रहता ये सुख, बोध से निकलना चाहिए ऐसा सुख, ऐसा मुस्कान, फिर बाकी तो फीके पड़ने लगते। जिसकी तलाश में हम ये सब कर रहे हैं, डोल पीटते हैं, गलत सलत काम सब कर बैठते हैं लोग, उस सब का मकसद एक ही, मैं सुखी हो जाऊं, आनंदित हो जाऊं। वो आनंद और सुख तेरे भीतर, बोध के भीतर छिपा हुआ है, उसको पहचानो, उसको जानो, उसको जगाओ। अच्छा, ये करें कब, मैं कैसा मुक्त हूं, ये कब होगा, पर मैं तो बंधन में हूं, घर का बंधन है, पैसे का बंधन है, पद का बंधन है, औरों का, आसपास अड़ोस पड़ोसों का बंधन है, कुछ ना कुछ बंधन है, कहीं भी आता हूं तो कोई बंधन ही बंधन है, आश्रम पहुंचता हूं इधर भी बंधन है, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, या सुबह उठ के आसन करो, प्राणायाम करो, ये करो, वो करो, ये भी बंधन लगता है।

भवेत्। किं वदन्ति ह सत्येयम्, क्या कहे सत्य यही है, जैसा मति वैसा गति, जैसे तुम सोचते वैसे तुम होने लगते हो, तुम अपने आप को बंधन में हो ऐसा करके महसूस करते हो तो वैसा ही होगा। तुम्हारा अभिमान एक मुक्त के साथ हो तो मुक्ति तुमको महसूस होने लगेगी। जैसा तुम सोचते हो, जैसा तुम अपने आप को मानते हो, वैसे तुम रहने लगोगे। तुम अपने आप को चोर समझो, चोरपन में अभिमान रखोगे तो तुम चोर ही बनो। तुम अपने आप को एक अहिंसक मानो तो तुम अहिंसक ही बनोगे। या मतिर सा गतिर भवे, जैसा मति है वैसे तुम्हारी गति होगी। तुम अपने आप को नलायक नलायक समझते रहो तो नलायक ही रहोगे। अक्सर लोग पूछते हैं हमसे, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव करें, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? मैं कहता हूं बिल्कुल संभव नहीं, कोई चारा नहीं। आत्मविश्वास बढ़ ही नहीं सकता तेरा, नहीं मान के सिर्फ आत्मविश्वास नहीं है, नहीं है मान के बढ़ाओगे कैसे उसको? नहीं है। अपने आप को कमजोर मानने वाला व्यक्ति कमजोरी बना रहेगा। जागो, तुम मुक्त हो, तुम्हारा अभिमान मुक्ति पर होना चाहिए, मैं मुक्त हूं।

呀，哇，क्या गलती कर बैठते थे हम लोग। सुख भोगा तो बंधन का अनुभव हुआ, दुख भोगा तो बंधन का अनुभव हुआ, मगर मैंने जाना नहीं मैं सुख दुख से परे हूं। तो मेरा अभिमान सिर्फ मन के स्तर पर टिक गया, वहीं रह गया।

एक बाबा थे मुक्त डायोजनीस कहके, कहते उनको जब बांध के लिया जा तो उनको गुलाम बना दिया, बड़े अड्डे कट्टे थे उनको। जब आक्रमण हुआ हिंदुस्तान के वो पश्चिमोत्तर दिशा में, जब इनको बांध के रस्सी से और सलाखे से बांध के ले जा रहे थे गुलाम बना के, तब भी वो चिल्ला के बोलते थे मैं हूं यहां बिकाओ में, जो जो खरीदना चाहते खरीदो भाई आओ, मुस्कुराते मुस्कुराते मैं मुक्त हूं, एक मुक्त व्यक्ति है यहां। दूसरे ने इनको गुलाम समझा मगर वो अपने आप को कभी गुलाम नहीं समझे, मुक्त ही समझे थे। तो समझने वाले भी क्या समझे, वो भी डर के भाग गया सब, उनको भी लगा रहे भाई कैसे समझ सकते हैं। हम अपने भीतर जाके देखते नहीं, उलझे रहते हैं। जागो, अभिमान मुक्ति के साथ लगाओ।

जब किसी को कोई बीमारी लगती तो बीमारियों का वर्णन करने लगते हैं, और डॉक्टर भी यदि बोले नहीं तुम्हें ये बीमारी नहीं, तो डॉक्टर पर ही गुस्सा करते हैं। पर कुछ डॉक्टर सज्जन आए तो उस दिन कह रहे थे हमसे कि गुरु जी क्या कहें, कुछ ना कुछ दवाई देना ही पड़ता है। हम कहते हैं तुम्हें कोई बीमारी नहीं है तो हम पर नाराज हो जाते हैं। पेशेंट्स को रखने के लिए कुछ ना कुछ देते हैं हम, कोई विटामिन कुछ दो दवा देते, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। सच में दवा नहीं होती है, वैसी चीनी की गोली वो खा के लगता है, जैसे होम्योपैथी गोली होती ना कुछ खा के लगता है कि हमने कुछ दवा लिया तो ठीक हो गया। तरह तरह की चित्त विभ्रांति भ्रम हम पैदा करके बैठे हुए होते हैं। बंधन भी इस तरह का एक चित्त का भ्रम है। अरे तुम्हारे चित्त पर क्या पड़ा है, पता नहीं कब कब तेरा अंत हो जाएगा, कभी तो मर जाओ, तुम्हारा क्या जिम्मेदारी है सर? करने वाला तो कोई और है, सबका मालिक है, सबको देखने वाला कुछ कोई है,